0: पर समूची जाति या राष्ट्र को इससे क्या लाभ? ये तो सुधार नहीं, एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना और दूसरों के घर ढहने देना।
1: तो आपका तात्पर्य यह है कि समाज सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं?
0: ये कौन कहता है? अवश्य समाज सुधार की आवश्यकता है, पर जिसे आप समाज सुधार कहते हैं उससे सर्वसाधारण जनता, भारत की कोटि कोटि जनता का क्या हित होगा? विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र आदि जिन सुधारों के लिए आप चिल्ला रहे हैं उनकी भारत की बहुसंख्यक जनता को आवश्यकता ही नहीं है। उनमें विधवा विवाह की प्रथा भी है और स्त्रियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है, इसलिए वे इन बातों को सुधार ही नहीं मानते। मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब दोष हम में श्रद्धा के अभाव से ही घुस आए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि रोग समूल नष्ट किया जाए, नहीं तो वो फिर बढ़ जाएगा। सुधार अवश्य हो, कौन इतना मूढ़ है जो ये नहीं मानता। उदाहरण के लिए, हमें अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जाति की शारीरिक निर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
2: उस दिन सूर्य ग्रहण था, इसलिए प्रियनाथ जी बोले, अब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊंगा, और प्रणाम कर चले गए। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी के सम्मुख अंतर विवाह का विषय छेड़ा और पूछा,
3: भिन्न भिन्न जातियों और प्रांतवासियों में अंतर विवाह कैसे प्रारंभ किया जाए?
0: मैं भिन्न धर्मावलंबी जातियों या प्रांतवासियों में अंतर विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। कम से कम आज तो उससे समाज के बंधन बहुत ढीले पड़ जाएंगे और कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल समधर्म के अनुयायियों के ही परस्पर अंतर विवाह का समर्थन करता हूँ।
3: तो भी इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि मेरी पुत्री बंगाल में जन्मी और वहीं उसका लालन पालन।

0: संभव हो सकेंगे। और आज तो ऐसे विवाहों के एकदम प्रारंभ कर देने का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त गुरु मंत्र ये है कि जिधर कम से कम विरोध हो उस रास्ते चलो। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी जाति की उपजातियों में अंतर विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदाहरण लो, उनमें कई उपजातियां हैं, जैसे उत्तराढ़ी, दक्षिण राढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर विवाह नहीं होते। अब दक्षिण राढ़ी और उत्तराढ़ियों में परस्पर विवाह संबंध शुरू करने चाहिए, और यदि ये अभी संभव नहीं है तो बंगजों और दक्षिण राढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है उसी में यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार बनी बनाई चीज को उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है ना?
1: अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा?
0: क्या आप नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह संबंध सीमित होने से हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रकारांतर से निकट के कुटुंबियों और आत्मियों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज की शरीर संपदा का ह्रास हो रहा है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की बीमारियां और बुराइयां उसमें घुस रही हैं। एक सीमित संख्या के व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है, और जन्म से ही नवजात शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं।

0: उसकी आजकल के विविध रोगों से रक्षा हो सके।
1: महाराज, आपका बाल विवाह के संबंध में क्या मत है?
0: बंगाल के शिक्षित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक दो वर्ष अधिक होने पर ही होने लगा है, किंतु इसका कारण समाज सुधार की भावना नहीं अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों ना हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो जानी चाहिए, पर बेचारा बाप करे क्या। जो ही लड़की जरा बड़ी होती है, माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसिनें यही एक टेर लगाने लगती हैं कि वर की खोज की जाए, और जब तक वर नहीं मिल जाता तब तक बेचारे बाप को चैन नहीं लेने देती। सरकार ने कानून बनाकर 12 वर्ष की कन्या से विवाह दंडनीय कर दिया।

0: ये आंदोलन कर राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं।
1: तो आपके मत से लड़के लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र हो जाने पर ही होना चाहिए?
0: अवश्य, पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए, नहीं तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से नहीं, वरन ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे। केवल किताब पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।
1: हमारे नारी समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है।
0: इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी बहादुर थी।
1: आप जैसा बता रहे हैं यह एक नई बात है और मुझे मालूम पड़ता है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा।
0: फिर भी हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, वरन अपने को भी शिक्षित करना है। साथ ही साथ महिलाओं को विज्ञान व अन्य विषय, जिनसे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाए। ये जानकर कि परोपकार के लिए ये करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरलता पूर्वक कोई भी विषय सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे पुण्य संकल्प, पवित्र आत्मा ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है।
1: इससे देश का किस तरह भला होगा?
0: उनके आचरण से तथा सर्वसाधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श में उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से लोगों के विचारों और आशा आकांक्षाओं में या 10 वर्ष की, और यदि 13 वर्ष की अवस्था में ही उसकी संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए ही महोत्सव हो जाता है। यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगी उनका तो कहना ही क्या, उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा और विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा।
2: एक दिन संध्या के समय बलराम बाबू के घर रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभा भरी थी। मठ से स्वामी तुरियानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी प्रेमानंद व अन्य लोग भी आए हुए थे। स्वामी जी बरामदे में विराजमान थे और चारों ओर बरामदे में लोग भरे थे। जब जब स्वामी जी कलकत्ता आते इसी तरह लोग जुट जाते थे।
3: सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ये सुन रखा था कि स्वामी जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वे स्वामी जी से कोई भजन सुनने के इच्छुक थे। ये जानकर मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त ने स्वामी जी के समीप बैठे कुछ सज्जनों के कान में कहा कि स्वामी जी से गाने का आग्रह करो। स्वामी जी ने उनका आशय ताड़ लिया और वे मुस्कुराकर बोले,
0: मास्टर महाशय, ये आपस में क्या कानाफूसी चल रही है, जरा जोर से बोलें।
3: मास्टर महाशय के प्रार्थना करने पर स्वामी जी अपने सुरीले कंठ से ये गीत

0: ऐसा प्रतीत होता था मानो वीणा बज रही हो। भजन समाप्त होने पर वे मास्टर महाशय से बोले,
1: अब तो खुश हो ना, पर अब और नहीं गाऊंगा, नहीं तो मैं भावावेश में आकर गीत की मादकता में डूब जाऊंगा और पश्चिम में व्याख्यान देते देते मेरा गला भी तो अब खराब हो गया है। मेरे स्वर में अब बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हो गया है।
2: स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को मुक्ति पर कुछ कहने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी ने खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिया। उसके बाद अन्य ब्रह्मचारी भी बोले। फिर स्वामी जी ने इस विषय पर उपस्थित सज्जनों को अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनके एक गृहस्थ शिष्य ने वाद का प्रारंभ किया। जब वे अद्वैत और ज्ञान को भक्ति और द्वैत से श्रेष्ठ बताने लगे तो बीच में कहीं किसी श्रोता ने प्रतिवाद किया। जब वे दोनों अपने अपने पक्षों का खंडन करने लगे तो एक अच्छा खासा वाद विवाद आरंभ हो गया। स्वामी जी कुछ देर तो सुनते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों आवेश में आ रहे हैं तो उन्हें शांत करते हुए बोले,
1: देखिए देखिए, आप लोग विवाद में इतना आवेश लाकर सब मजा किरकिरा कर देते हैं। सुनो, श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि विशुद्ध ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में परमेश्वर से परे कोई प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम भी तो परमेश्वर ही है।
0: उन्होंने बात को समझाते हुए आगे कहा,
1: इस तरह भक्ति द्वैत कहां रहा? इसी प्रकार जो भी इच्छाएं हैं, आकर्षण हैं, वृत्तियां हैं, वे भी ईश्वर के ही रूप हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इन सब भावनाओं और वृत्तियों में भी ईश्वर ही है। एक ग्रह पुंज दूसरे ग्रह पुंज को आकर्षित करता है, उसमें भी ईश्वर ही है, सर्वत्र वही है। ज्ञान योग के अनुसार भी वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ है? वे तो एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं।
3: महाराज, माँ की ममता में ईश्वर रह सकता है, पर इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर जगत के सत्कार्यों का जितना कारणीभूत है उतना ही पाप का भी है।
1: ये दृष्टि केवल परम सिद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही प्राप्त होती है। तभी ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेम या आकर्षण है वहीं ईश्वर है। पर अपने जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस अवस्था का प्राप्त होना आवश्यक है।
3: फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि पाप में भी ईश्वर ही है।
1: देखो, यथार्थ में ना तो कोई चीज भली है और ना बुरी है, ये तो केवल एक परिपाटी है कि हम किसी चीज को भली या बुरी कह देते हैं। एक ही चीज को हम बुरी कह देते हैं तो किसी अन्य अवसर पर उसे भली कहने लगते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है।
3: वो कैसे स्वामी जी?
1: उदाहरण के लिए इस दीप ज्योति को ही लो। इसके प्रकाश में हम पढ़ते हैं और कई अन्य उपयोगी काम भी करते हैं, ये उसके उपयोग का एक प्रकार है। अच्छा, अब यदि उसमें कोई अपनी उंगली रखे तो वो जल जाएगी, ये उसके उपयोग का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार कोई वस्तु जिस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, इसी से उसके भले बुरे का निर्णय होता है। इसी प्रकार सद्गुण दुर्गुण पाप और पुण्य है। हमारी मानसिक व शारीरिक प्रवृत्तियों का उचित उपयोग ही पुण्य है और उनका अनुचित उपयोग व ह्रास ही पाप है।
2: इस तरह कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर किसी ने कहा, नक्षत्र तारा ग्रह मंडलों के परस्पर आकर्षण में भी ईश्वर है। ये सिद्धांत सच हो या ना हो, पर यह विचार अत्यंत कवित्वमय है, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: नहीं महाशय, ये कल्पना की उड़ान नहीं। ज्ञान प्राप्ति होने पर इस महान सत्य का आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
0: स्वामी जी आगे जो कुछ बोले उसका आशय ये था, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत में जो भिन्न भिन्न शक्तियां क्रियाशील हैं, वे भी एक ही महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
3: महाराज, तो ये माया क्यों है और आई कहां से?
1: ईश्वर के संबंध में क्यों का प्रश्न करना गलत है। जो अपूर्ण है, जिसमें अभाव और कामनाएं हैं, उसी के संबंध में क्यों का प्रश्न किया जा सकता है। जो निष्काम है, जो पूर्ण है, एक है, उसके संबंध में क्यों कैसा, माया कहां से आई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देश काल निमित्त ही माया है। तुम, मैं और हम सब माया में हैं, तथा तुम माया में रहते हुए ये प्रश्न कर रहे हो कि माया के परे क्या है। तुम जब तक माया में हो तब तक ये कैसे कह सकते हो।
2: इसके पश्चात फिर कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर मिल, हैमिल्टन, हर्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य पंडितों के दर्शन शास्त्र पर चर्चा हुई और स्वामी जी ने सरलता से सब समझाया। सबको स्वामी जी का पाश्चात्य दर्शन का अगाध ज्ञान देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद विविध सामयिक प्रश्नों पर चर्चा हुई और सभा विसर्जित हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सरोद वादन, जिसे प्रस्तुत करेंगी रुचा बेड़ेकर, और उसके बाद गायन की प्रस्तुति होगी जिसे पेश करेंगे सारंग फगरे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रुचा बेड़ेकर का सरोद वादन।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सारंग फगरे का गायन। अब दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत। अपने दोस्त दानिश को सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन, कमी तुझ में नहीं तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, अठोक दे दावा कॉलेज पर, पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का, सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि बामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: अरे सर,
1: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
1: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
1: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी, अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
1: ना ना ना ना ना
0: गई।
1: ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माताजी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
1: हाँ
0: भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे, मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं?
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया।
4: हाँ।
3: तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी
5: और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारिए आदमी वादमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
5: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
5: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
5: सर 50 किलोमीटर का।
2: मगर कैसे?
5: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
5: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
5: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
5: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
5: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
5: बहन छायावती ने।
0: मगर वो कैसे?
5: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
5: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
5: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
5: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
5: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
5: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
5: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर,
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
2: सुनिए सर।
0: अरे वाह,
5: फिर
0: बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
2: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
5: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
5: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
4: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं देवकी पंडित का गायन, और उसके बाद आप सुनेंगे पंडित पूर्वायन चटर्जी और अनुव्रत चटर्जी का सितार वादन। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं देवकी पंडित का गायन।

तो श्रोताओं, देवकी पंडित का गायन सुनने के बाद अब बारी है सितार वादन की, जिसे पेश कर रहे हैं पंडित पूर्वयन चटर्जी और अनुप्रत बनर्जी।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित पूर्वयन चटर्जी और अनुब्रत बैनर्जी का सितार वादन। आज का भारत भारती कार्यक्रम बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वह रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए,

0: जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको। सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते। ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है।
0: ओ बुढ़ऊ बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार हैं। एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं। आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप। अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सूझ रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
1: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
0: ओहो हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। एक काम करिए आप, रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
1: मगर वो तो नहीं है।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
0: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब, हैं? ची ची ची ची ची। जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर गया है?
1: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो 3rd क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
0: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
1: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
0: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
1: ये बात तो आपको समझ नहीं है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही हूँगा। मरा आदमी थोड़े खाने की फिक्र करता है।
0: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए, ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
1: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
0: तीरथ पर गया था, तीरथ पर गया था, जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
1: काहे काहे मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
0: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा। काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
1: अरे यार
0: काहे बीच में मुझ कर्म

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, अब तक हम भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और विभिन्न सुरक्षा बलों और रक्षा संस्थानों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या केवल सैनिकों और सुरक्षा बलों के साहस से ही देश की रक्षा होती है? नहीं, उनके पीछे ऐसे अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं जो देश की सुरक्षा को नई शक्ति देते हैं। श्रोताओं, आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हाल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रेडियो नाटक देश के संस्थान का ये सफर विज्ञान से तकनीक की ओर, इस नई श्रृंखला के साथ पोती रुचि और दादाजी के संवाद।
2: फाइटर जेट गया।
3: कहाँ? कहाँ बेटा?
2: अरे दादू, जितनी देर में आप बालकनी तक आएंगे ना, तब तक वो अपने स्टेशन पर भी पहुँच गया होगा।
3: अरे बेटा, क्या करूँ, उम्र का तकाजा है ना।
2: वो तो है।
3: बताओ
2: दादू। आपको पता है, जब भी मैं लड़ाकू विमान को आकाश में उड़ते हुए देखती तो मन गर्व से भर जाता है।
3: और सोचो बिटिया, उन विमानों में से कई हमारे अपने देश में बनाए जाते हैं।
2: सच?
3: हाँ बेटा, और उन्हें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हाल, या HAL।
2: दादू, ये हाल क्या है?
3: हाल भारत की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ये विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स और अनेक रक्षा प्रणालियों का विकास और निर्माण करती है।
2: दादू, ये हाल क्या कोई निजी कंपनी है?
3: नहीं बिटिया, हाल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, समझे? देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: दादू, आपने एयरोस्पेस कहा, इसका क्या मतलब होता है?
3: शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखो बेटा, एयरोस्पेस का संबंध दो क्षेत्रों से होता है, विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान। क्या क्या बोला मैंने?
2: विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान।
3: हाँ, यानी वे सभी तकनीकें और प्रणालियां जो आकाश में उड़ने वाले विमानों और अंतरिक्ष में जाने वाले यानों से जुड़ी हों।
2: यानी हाल केवल हवाई जहाजों तक ही सीमित नहीं है।
3: बिल्कुल सही समझा तुमने, बिल्कुल सही बेटा।
2: अच्छा दादू, ये बताइए कि हाल की शुरुआत कब हुई थी?
3: हाल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। इसे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति बालचंद हीराचंद ने स्थापित किया था। उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड।
2: यानी ये संस्था स्वतंत्रता से पहले मौजूद है।
3: हाँ बिटिया, बाद में सन 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया।
2: और इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
3: कर्नाटक की राजधानी बेटा, बेंगलुरु में।
2: दादू, मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके सभी कारखाने भी वहीं स्थित है?
3: नहीं बिटिया, इसका मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसके कारखाने, उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान एवं विकास केंद्र देश के कई राज्यों में स्थित हैं।
2: कहाँ कहाँ दादू?
3: बेंगलुरु के अलावा बेटा, नासिक, कानपुर, कोरापुट, उड़ीसा, हैदराबाद, लखनऊ और अन्य कई स्थानों पर हाल की इकाइयां कार्य कर रही हैं।
2: अच्छा।
3: प्रत्येक केंद्र की अपनी विशेष भूमिका होती है बेटा। कई विमानों का निर्माण होता है, कहीं इंजन बनाए जाते हैं तो कहीं अनुसंधान, परीक्षण और तकनीकी विकास का कार्य किया जाता है।
2: यानी हाल केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ एक विशाल तकनीकी नेटवर्क है।
3: बिल्कुल सही बेटा, यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन और कुशल कर्मचारी मिलकर हाल को भारत की अग्रणी एयरोस्पेस संस्था बनाते हैं।
2: वाह दादू, यानी ये वाकई पूरे देश की सामूहिक प्रतिभा और परिश्रम का प्रतीक है।
3: बिल्कुल बिटिया, जब देश के अलग अलग हिस्सों की प्रतिभाएं एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं, तभी ऐसी महान संस्थाएं राष्ट्र की शक्ति बनती हैं।
2: वैसे दादू, क्या विमान बनाना आसान प्रोसेस है?
3: नहीं बिटिया, ये इतना आसान नहीं है, बल्कि किसी विमान के निर्माण से पहले सालों तक अनुसंधान, परीक्षण और डिजाइन का कार्य किया जाता है। और हाल के अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास केंद्रों में वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों पर लगातार काम करते रहते हैं।
2: मतलब पहले शोध, फिर डिजाइन और उसके बाद निर्माण।
3: बिल्कुल सही, शाबाश। इसी प्रक्रिया को अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है बेटा।
2: वैसे दादू, आपने एवियोनिक्स शब्द का भी जिक्र किया था, ये क्या होता है?
3: देखो बेटा, विमानों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एवियोनिक्स कहा जाता है।
2: ये किस तरह के उपकरण होते हैं दादू?
3: ये रडार, संचार प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इनके बिना आधुनिक विमान सुरक्षित रूप से उड़ान नहीं भर सकते बेटा।
2: यानी एवियोनिक्स विमान का दिमाग होता है।
3: वाह बिल्कुल सही, शाबाश बेटा।
2: दादू, तो क्या हाल केवल विमान बनाकर अपना काम पूरा कर देती है?
3: नहीं नहीं बेटा, विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत और समय समय पर तकनीकी उन्नयन भी हाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
2: अच्छा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
3: इसे बेटा MRO कहा जाता है, यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। इसे हिंदी में कहेंगे रखरखाव, मरम्मत और गहन तकनीकी निरीक्षण।
2: मतलब हाल विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक उसकी कार्यक्षमता का ध्यान रखती है।
3: बिल्कुल बेटा।
2: दादू, विमान बनाते समय सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है?
3: सुरक्षा और गुणवत्ता का बेटा। विमान का प्रत्येक पुर्जा कई बार जांचा और परखा जाता है, छोटी सी गलती भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है।
2: वो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट भविष्य में हाल जैसी संस्था में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और आधुनिक तकनीकों की पूरी दुनिया विज्ञान और गणित की मजबूत नींव पर खड़ी होती है बेटा।
2: यानी गणित और विज्ञान से दोस्ती करना बहुत जरूरी है दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से हमें उड़ान के सिद्धांत समझ में आते हैं। गणित से जटिल गणनाएं की जाती हैं और कंप्यूटर विज्ञान आधुनिक प्रणालियों को संचालित करने में मदद करता है।
2: तो फिर आगे कौन कौन से विषय पढ़े जा सकते हैं दादाजी?
3: 12वीं के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कई क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं बेटा।
2: जैसे?
3: जैसे कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। इन क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके वे हाल, DRDO, इसरो इन जैसे कई अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं बेटा।
2: दादू, तो क्या केवल इंजीनियर ही हाल में काम करते हैं?
3: नहीं बिटिया, हाल जैसी बड़ी संस्था में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ साथ तकनीशियन, कंप्यूटर विशेषज्ञ, डिजाइनर, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट प्रबंधक, वित्त अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्य करते हैं। इसीलिए हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए यहाँ अवसर मौजूद है।
2: अच्छा, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई भूमिका होती है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, अनुशासन, परिश्रम, जिज्ञासा और निरंतर सीखने की इच्छा। विज्ञान का हर क्षेत्र हर दिन आगे बढ़ता है बेटा, इसीलिए सीखना कभी नहीं रुकता।
2: दादू, क्या विद्यार्थियों को भविष्य के लिए पहले से कुछ विशेष आदतें भी विकसित करनी चाहिए?
3: बिल्कुल करनी चाहिए बेटा। उन्हें विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और नई तकनीकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इससे उनकी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है।
2: दादाजी, यानी आज की पढ़ाई ही कल देश सेवा का माध्यम बन सकती है?
3: बिल्कुल बन सकती है बेटा। देश की रक्षा केवल सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते, बल्कि प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और कारखानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन भी करते हैं बेटा। जब कोई वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है, कोई इंजीनियर सुरक्षित विमान बनाता है और कोई तकनीशियन उसे पूरी निष्ठा से तैयार करता है, तब वे भी राष्ट्र सेवा ही कर रहे होते हैं बेटा।
2: मतलब देशभक्ति केवल हथियार उठाने में नहीं है दादाजी, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने में भी है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। यदि आज का विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, विज्ञान को समझे और बड़े सपने देखने का साहस करे, तो कल वही भारत की नई उड़ान का निर्माता बन सकता है।
2: वाह दादू, अब तो मुझे भी समझ में आ गया है कि हाल जैसे संस्थान केवल विमान ही नहीं बनाते, बल्कि देश के युवाओं को भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
3: हाँ बेटा, और यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। साथ साथ नई पीढ़ी के नई सोच के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सेना तैयार करती है।
2: ये तो वाकई सुपर मेकर है दादू।
3: बिल्कुल सुपर मेकर है बेटा। तुम जानती हो बेटा, हाल द्वारा विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत, उन्हें समय समय पर नई तकनीकों के अनुरूप उन्नत बनाने की प्रक्रिया का काम कभी नहीं रुकता। हाल के वैज्ञानिक कर्मचारी दिन रात इसे बेहतर बनाने की दिशा में लगे रहते हैं बेटा।
2: मतलब एक विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक।
3: बिल्कुल बिटिया, तभी तो हाल भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने वाले प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है।
2: दादू, ये तो बिल्कुल ऐसा है मानो एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी ले ली जाए।
3: ऐसा ही समझो बेटा।
2: मतलब आज की मेहनत ही भविष्य की उड़ान बन सकती है।
3: सही कहा बेटा। जब वैज्ञानिकों का ज्ञान, इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण एक साथ आते हैं, तब आकाश में नई उड़ानें जन्म लेती हैं।
2: और शायद इसी कारण हाल को आकाश की शक्ति के निर्माण करने वाले संस्थान के रूप में जाना जाता है।
3: बिल्कुल बेटा।
2: दादू, हाल भविष्य की किन परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
3: फिलहाल बेटा, हाल की कई अहम परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन प्रणालियां और भविष्य के लड़ाकू विमान शामिल हैं।
2: यानी आने वाले सालों में भारत सुपर पावर और आत्मनिर्भर बनने वाला है दादाजी।
3: बिल्कुल बेटा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब बस अपने उत्पाद बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी तकनीक, अपने वैज्ञानिक ज्ञान और अपनी निर्माण क्षमता विकसित करना भी होता है।
2: इसका मतलब हाल इसी दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: हाँ बेटा, हाल ने केवल विमान नहीं बनाए, बल्कि भारत को वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में सम्मानजनक पहचान दिलाने में भी योगदान दिया है।
2: दादू, आज मुझे समझ में आया कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अनुसंधान संस्थानों में भी होती है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही भविष्य के भारत की असली शक्ति है।
2: दादू, आपने हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में तो बताया, लेकिन अब और क्या नया बताएंगे मुझे?
3: देखो बेटा, अब हम हाल के एक ऐसे पक्ष को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
2: वो क्या?
3: हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
2: सच दादू?
3: हाँ बेटा।
2: मुझे तो लगता था कि हाल का काम केवल विमान बनाना ही है।
3: यही तो खास बात है। किसी भी विमान को उड़ाने के लिए केवल उसका ढांचा पर्याप्त नहीं होता, उसे शक्ति देने के लिए एक अत्याधुनिक इंजन की जरूरत होती है बेटा। जिस तरह मानव शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, उसी प्रकार इंजन विमान को गति और शक्ति प्रदान करता है।
2: यानी इंजन विमान का दिल होता है दादाजी?
3: बिल्कुल बेटा, यदि विमान का ढांचा उसका शरीर है तो इंजन उसका दिल है। बिना इंजन के विमान उड़ ही नहीं सकता।
2: लेकिन दादू, विमान का इंजन बनाना तो बहुत कठिन काम होगा।
3: हाँ बेटा, ये दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक मानी जाती है। विमान के इंजन को अत्यधिक तापमान, तीव्र गति और भारी दबाव में भी सुरक्षित रूप से कार्य करना पड़ता है। इसलिए इसके निर्माण में अत्यंत उन्नत धातुओं, खास मिश्र धातुओं और सटीक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है।
2: तो क्या हाल अपने इंजन स्वयं बनाता है दादाजी?
3: हाल ने सालों से कई तरह के जेट और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, असेंबली, परीक्षण और रखरखाव में खास भूमिका निभाई है बेटा। इसके अलावा हाल स्वदेशी इंजन तकनीक के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है।
2: दादू, स्वदेशी इंजन तकनीक का क्या महत्व है?
3: इसका मतलब है कि हम महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहें। अगर इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक देश में ही विकसित हो जाए तो हमारी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मजबूत होती है बेटा।
2: क्या इस दिशा में कोई विशेष संस्थान भी काम कर रहा है?
3: हाँ बेटा, बेंगलुरु स्थित एयरो इंजन अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी एयरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य की इंजन तकनीकों पर लगातार अनुसंधान करते रहते हैं।
2: दादू, क्या इंजन बनने के बाद उसे सीधे विमान में लगा दिया जाता है?
3: नहीं बिटिया, उससे पहले इंजन का कई चरणों में कठोर जांच और परीक्षण किया जाता है। इंजन को अलग अलग तापमान, ऊंचाई और परिस्थितियों में परखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो हर स्थिति में सुरक्षित और विश्वसनीय रहेगा।
2: यानी एक इंजन के पीछे भी वर्षों की मेहनत छुपी होती है दादाजी।
3: बिल्कुल बेटा, हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के अथक परिश्रम के बाद ही कोई इंजन उड़ान भरने योग्य बन पाता है बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि विमान को उड़ाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन उसे बनाने वाली तकनीक विकसित करना है।
3: सही कह रहे हो बेटा, और यही कारण है विमान इंजन तकनीक किसी भी राष्ट्र की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण मापदंड मानी जाती है।
2: वाह, अब तो मुझे हाल के काम का दायरा पहले से भी अधिक बड़ा दिखाई देने लगा है दादाजी।
3: और अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है बिटिया। अगली बैठक में हम जानेंगे कि हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किस प्रकार योगदान देता है और कैसे वो भविष्य के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: सचमुच दादू?
3: हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है।
2: वो भला क्या?
3: तुम मुझे बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ पहले।
2: बस
3: हाँ,
2: इतनी सी बात?
3: हाँ बेटा,
2: अभी बना के लाती हूँ दादू।
3: थैंक यू प्यारी बिटिया।
2: जय हिंद दादाजी।
3: जय हिंद बच्चे, जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
3: और मैं दीपक नेमा।
1: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
2: तारीख मध्य प्रदेश की धरती ने एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चुंगुल से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया।
1: मैं जानती हूँ आज तुम मध्य प्रदेश की धरती का गुणगान क्यों कर रहे हो।
2: अच्छा, क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि तुम मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हो, जहाँ 3 जून 1891 को राय साहब त्रिलोक्यनाथ मुखर्जी के घर एक महान क्रांतिकारी अवनीनाथ मुखर्जी ने जन्म लिया था।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुम।
1: अवनीनाथ के बचपन में किसने सोचा था कि आगे चलकर वह महान क्रांतिकारी बनेगा?
2: हाँ तारीख, अवनीनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ। अवनीनाथ ने वस्त्र उद्योग में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस कला के उच्च अध्ययन के लिए पहले वे जापान और फिर जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन दिनों भारतीय क्रांति की फसल पनप रही थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्र वातावरण इसके लिए काफी अनुकूल था। अनेक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। अवनीनाथ उनके संपर्क में आए तो फिर पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए, ऐसे कि उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का संकल्प ही ले लिया।
1: हाँ, कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी श्रृंखला की प्रमुख कड़ी बन गए। जर्मनी के प्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क से भारत में पहुंचने के लिए हथियारों का प्रबंध करना अवनीनाथ का प्रमुख दायित्व था।
2: ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग ने उन्हें भयानक क्रांतिकारी की संज्ञा दे रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जासूसों का एक पूरा दल उनके पीछे छोड़ दिया था। पर अवनीनाथ जासूसों की जासूसी करने की कला में निपुण थे। उन्हें कोई ब्रिटिश जासूस जानता ही नहीं था कि आखिर अवनीनाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी कौन सा है। इसके चलते कई बार वे अपने लिए तैनात जासूसों के साथ ही सफर कर चुके थे और कोई ब्रिटिश जासूस जान ही नहीं पाया था कि उनके साथ सफर करने वाला व्यक्ति वही अवनीनाथ मुखर्जी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बेचैन है।
1: अपने दायित्व की पूर्ति के सिलसिले में सन 1912 में जब अवनीनाथ भारत लौटे तो अपने शक की जाँच के लिए ब्रिटिश जासूसों का एक दल भी उनके पीछे पीछे भारत आया। कुछ दिन ब्रिटिश जासूसों की आंखों से ओझल रहने के लिए अवनीनाथ ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में प्राध्यापकी स्वीकार कर ली। प्राध्यापकी तो केवल बहाना थी, उद्देश्य था वृंदावन को कुछ समय के लिए आश्रय स्थली बनाना। उचित अवसर पाकर अवनीनाथ वृंदावन से गायब होकर जापान जा पहुँचे। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार इकट्ठे करने की योजना अभी अधूरी जो थी।

0: जापान से शस्त्र विक्रेताओं से सौदा करके अवनीनाथ जब जापान से भारत के लिए जहाज पर सवार हुए तो साथ ही एक ब्रिटिश जासूस भी उनके साथ उस जहाज में सवार हो गया। जिस केबिन में अवनीनाथ यात्रा कर रहे थे वह जासूस भी उसी केबिन में उनका सहयात्री बन करके उनसे मित्रता गाढ़ने की गरज से तरह तरह की बातें करता रहा। यूं तो अवनीनाथ के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, पर जापान के शस्त्र विक्रेताओं के कुछ पते जरूर एक कागज पर लिखे हुए थे। जब वह सहयात्री नहाने के लिए स्नान गृह में गया तो अवनीनाथ ने पते वाला कागज शैया के मोटे गद्दे के नीचे दबा दिया और निश्चिंत हो गए।
1: पर जासूस ने अवनीनाथ की तलाशी लेने के लिए एक चाल

0: पर लिखे पतों ठिकानों पर हथियारों की खरीद के लिए पहुंचे थे। अवनीनाथ मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अवनीनाथ ने लाख सफाई दी कि उस कागज से उसका कोई वास्ता नहीं है। फिर वह कागज उनके पास से बरामद भी नहीं हुआ है, बल्कि शह यात्री के गद्दे के नीचे से निकला है, पर उनकी कोई दलील नहीं सुनी गई। जापान के शस्त्र विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी उनके विरुद्ध थी। उन्हें सिंगापुर से गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
1: भारत पहुंचने पर गिरफ्तारी की अवस्था में अवनीनाथ कब और कैसे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से निकल भागे कोई नहीं जान पाया। वह रहस्य ही बना रहा। इधर भारत में पुलिस इस मामले की तहकीकात और अवनीनाथ की पुनः गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी रही। उधर अवनीनाथ मुखर्जी सबको चकमा देकर हॉलैंड जा पहुंचे।

0: भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी यह घटना कम विस्मयकारी नहीं थी कि भारत से गायब होकर के हॉलैंड में अवनीनाथ मुखर्जी न केवल द्वितीय कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, बल्कि कुमारी रोशा फिटिंगफ के साथ प्यार की पेंगे भी बढ़ा रहे थे। आखिर हॉलैंड में ही रहते हुए उन्होंने रोशा फिटिंगफ से 1920 में विवाह कर लिया।
1: सन 1922 में अवनीनाथ मुखर्जी बर्लिन में थे और अपने पुराने क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हॉलैंड से गायब होकर वे कब बर्लिन पहुंचे, कोई नहीं जानता था। बर्लिन में उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, उनमें सुरेंद्र कर, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रमुख थे। अवनीनाथ मुखर्जी इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे।
0: बर्लिन में मौजूद क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि वह समय आ गया है जब उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत पहुंचकर विभिन्न प्रांतों में गुप्त संगठनों द्वारा विद्रोह की भूमिका बनाए। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल हुलिया बदलने में माहिर हो, वरन आवाज बदलकर विभिन्न प्रांतों की बोलियों के लहजे में भी बात कर सके। सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से इसके लिए अवनीनाथ मुखर्जी का चुनाव किया, क्योंकि हुलिया और आवाज बदलने में उन्हें इतना कमाल हासिल था कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कई अवसरों पर वे अपने इस हुनर का लोहा मनवा चुके थे।
1: आखिर अवनीनाथ मुखर्जी अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे। अत्यंत कुशलता के साथ उन्होंने साथियों द्वारा सौंपा गया दायित्व पूरा किया। मद्रास, गया, कलकत्ता और ढाका नगरों में उन्होंने क्रांति की संरचना पूरी सफलता के साथ नियोजित की। अपना काम पूरा करके वे सन 1924 में यूरोप के लिए रवाना हो गए।
0: रूस के मास्को नगर में रह करके उन्होंने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें आजादी के लिए भारत का दावा पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रूसी प्रवास में ही भारत की आजादी के चिंतक, भारत माता के सपूत अवनीनाथ मुखर्जी ने 28 अक्टूबर 1937 को अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी और अपना नाम हमेशा के लिए भारत के महान सपूतों की सूची में दर्ज करा दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए, सुनते रहिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको लिए चल रहे हैं शहीद भवन में, जहां 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत निमाड़ के सुप्रसिद्ध गायक शिव भाई गुप्ता और साथियों ने निमाड़ी लोक गायन की प्रस्तुति दी।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाड़ी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: बोलो भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
2: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

कोचीन का अल्बुकर्क विद्रोह। सन 1503 में कोचीन की नम और खारी हवा में एक उभरते हुए वैश्विक साम्राज्य की नियति लगभग पटरी से उतर गई थी। स्थानीय प्रतिद्वंदियों की नौसैनिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि दो चचेरे भाइयों के तीखे बोल और टकराते अहंकार के कारण। ये एशिया में पुर्तगालियों के लिए सीखने का दौर था, जहां पदानुक्रम यानी हायरार्की में गहरा भ्रम था और अक्सर कई कैप्टन मेजर एक साथ सत्ता संभालते थे, जिससे विस्फोटक और आंतरिक संघर्ष पैदा होते थे। कोचीन का विद्रोह या अल्बुकर्क विवाद फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क और उसके चचेरे भाई अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के बीच कड़वी प्रतिद्वंदिता पर केंद्रित था। हालांकि उनका एक ही उपनाम था, लेकिन वे साम्राज्य के दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे। फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क एक गौरवशाली फिदाल्गो मध्यम कुलीन वर्ग था, जो व्यापार पर बढ़ते शाही नियंत्रण को संदेह की दृष्टि से देखता था। उनका मानना था कि साम्राज्य को कुलीन वर्ग के हितों की सेवा करनी चाहिए, जबकि अल्फोंसो दे अल्बुकर्क एक अवैध संतान था जिसके पास डॉम की उपाधि लगाने का अधिकार नहीं था। इस कारण वो राजा डॉम मैनुअल प्रथम का कट्टर वफादार बन गया। वो मैनुअल साम्राज्यवाद का जीवित अवतार था, जो सारी शक्ति और लाभ को शाही खजाने में केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सन 1503 के उत्तरार्ध में एक लकड़ी के किले के निर्माण के दौरान ये विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही लकड़ी की घेराबंदी खड़ी की गई, इसके नामकरण को लेकर एक प्रतीकात्मक युद्ध छिड़ गया। फ्रांसिस्को ने पारिवारिक विरासत के गौरव में इसका नाम कास्टेलो अल्बुकर्क रखने की मांग की। दूसरी ओर अल्फोंसो ने संप्रभु के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा दिखाने के लिए इसका नाम कास्टेलो मैनुअल रखने पर जोर दिया। ये केवल एक मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये राजशाही पूंजीवाद और कुलीन विशेषाधिकार के बीच एक बुनियादी संघर्ष था। हालांकि किला अंततः बन गया, लेकिन इस झगड़े ने गुटबाजी और अंतःवंश संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने दो शताब्दियों तक एशिया में पुर्तगाली उपस्थिति को प्रभावित किया। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के इंडीज के महान गवर्नर बनने के बाद भी कोचीन के उसके पुराने दुश्मनों जैसे लॉरेंको मोरेनो और गैस्पर परेरा ने उसे बदनाम करना जारी रखा। उन्होंने लिस्बन में राजा के कान भरे कि अल्फोंसो खुद गोवा का ड्यूक बनना चाहता है और एशियाई व्यापार को अपनी निजी जागीर में बदलना चाहता है। कोचीन का ये विद्रोह याद दिलाता है कि पुर्तगाली एशिया में एक एकजुट शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक खंडित कुलीन वर्ग के रूप में आए थे, जिनके आंतरिक नागरिक युद्ध किसी भी बाहरी खतरे जितने ही खतरनाक थे।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
4: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। ये वार्तालाप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर हुए थे और उनके द्वारा हमें स्वामी जी के उद्बोधन तथा स्फूर्तिदायक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी दिग्दर्शन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का पुनर्निर्माण पहले होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस सत्य का भी यथार्थ ज्ञान हमें इन वार्तालापों से होता है। अब आप प्रियनाथ सिंह जी से स्वामी जी के वार्तालाप के कुछ अंश सुनिए।
2: स्वामी जी उन दिनों कलकत्ते में बलराम बसु के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मैं भेंट करने पहुंच गया। जापान और अमेरिका पर बड़ी देर तक चर्चा होती रही। मैंने पूछा, स्वामी जी पश्चिम के देशों में आपके कितने शिष्य हैं?
3: बहुत से हैं।
2: 2-3 हजार?
3: शायद अधिक।
2: क्या आपने उनको मंत्र दीक्षा दी है?
3: हाँ।
2: आपने उन्हें मंत्रों का उच्चार करने की अनुमति दे दी?
3: हाँ।
2: आपने कैसे अनुमति दी महाराज?
3: कि जिन्हें मैंने दीक्षित किया है मेरे सब शिष्य हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मंत्रोच्चार का अधिकार नहीं है, पर ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता, यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य रहती है। क्या तुमने नहीं सुना, बाग बाजार के अघोर चक्रवर्ती का भतीजा दलित बन गया और दलितों का सब काम करता है, क्या वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं था?
2: स्वामी जी जरा विस्तार से समझाइए।
3: जाति से ब्राह्मण होना और गुणों से ब्राह्मण होना, ये दो भिन्न बातें हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मण जन्म लेने से ही हर कोई ब्राह्मण कहलाने लगता है, पर पश्चिम में यदि कोई ब्राह्मण गुण युक्त हो तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। जिस प्रकार सत्व, रज, तम तीन गुण हैं, उसी प्रकार ऐसे कुछ गुण हैं दुर्भाग्यवश आज इस देश में क्षात्र व ब्राह्मण गुणों का ह्रास हो रहा है, पर पश्चिम के देशों में लोग क्षत्रियत्व तक पहुंच चुके हैं और क्षत्रियत्व से एक सीढ़ी आगे ही तो ब्राह्मणत्व है। उनमें से कई लोगों ने तो ब्राह्मण कहलाने योग्य योग्यता भी प्राप्त कर ली है।
2: तो जो स्वभाव से सात्विक हैं वही आपके अनुसार ब्राह्मण है?
3: बिल्कुल। जैसे हर एक व्यक्ति में सत्व, रज और तम तीनों गुण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण व क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्मजात ही कमोबेश मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम ही लें। जब वो अर्थ प्राप्ति के लिए किसी की सेवा करता है, जब वो स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है, जब वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो उसमें क्षात्र भाव सर्वोपरि होता है, और जब वो ईश्वर चिंतन में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए एक जाति से दूसरी जाति में चला जाना संभव है। यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके और परशुराम क्षत्रिय कैसे बन सके? पर इस बात को अभी रहने दो।
0: स्वामी जी ने इसके पश्चात पश्चिम की व्यवहारवादिता की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वे धर्म साधना में कितनी व्यवहारिकता प्रकट करते हैं।
2: सच है महाराज, मैंने भी सुना है कि जब वे धर्म साधना करने लगते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां शीघ्र ही जागृत होने लगती हैं। अभी कुछ दिन हुए स्वामी शारदानंद जी को उनके एक पाश्चात्य शिष्य का पत्र आया, जिसमें ज्ञात हुआ कि 4 मास की साधना से उनकी कितनी अधिक आध्यात्मिक प्रगति हो गई है।
3: देखा ना, अब तुम समझे कि पश्चिम में ब्राह्मण हैं या नहीं। आज भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, पर ये उसका व्यवसाय बन गया है। और आजकल गुरु शिष्य संबंध भी तो कितना विचित्र हो गया है। अगर गुरु के घर में खाने को दाने नहीं रहते तो गुरु पत्नी उसको ये बात बताती है और बोलती है, अपने किसी यजमान के यहाँ एक बार फिर हो आओ, सारे दिन चौसर खेलने से तो पेट भरेगा नहीं। और गुरु जी जवाब देते हैं,
4: अच्छा अच्छा सुन लिया, अब चुप भी तो रहो, कल मुझे याद दिलाना। अभी अभी मैंने सुना है कि अपने एक यजमान के यहाँ अच्छी कमाई हुई है। उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, कल चला जाऊंगा।
3: यही तो है आपके पुरोहितों और कुल गुरुओं की दशा। पाश्चात्य देशों में ऐसा पतन नहीं हुआ है, वहां के धर्म गुरु अपने से कहीं अच्छे हैं।
2: शनिवार 22 जनवरी सन 1898 का दिन था। मैं प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पहुंच गया। स्वामी जी वहीं ठहरे हुए थे। उनका कमरा श्रोताओं से भरा था। स्वामी जी कह रहे थे,
3: आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। हम आत्मा हैं, अजर अमर मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है? असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो गए हैं और इसलिए हमारा और देश का पतन हो रहा है।
2: हम श्रद्धाहीन कैसे बन गए?
3: बचपन से हमारी शिक्षा ही ऐसी रही है, उसमें निषेध और नकार का ही प्राबल्य है। हमने यही तो सीखा है कि हम नगण्य हैं, नाचीज हैं। कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी महान पुरुषों का जन्म हुआ है। हमें एक भी तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। हमें हमारे हाथ पैर तक तो चलाना नहीं आता। हमें इंग्लैंड के इतिहास की तो एक एक घटना तिथि याद हो जाती है। पर दुख है, हमारे देश के गौरवमय अतीत से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। हम केवल निर्बलता का पाठ पढ़ते हैं। परतंत्र होने से हमें अब यह विश्वास हो गया है कि हम शक्तिहीन हैं और परावलंबी हैं, हम असमर्थ हैं और निकम्मे हैं।
2: क्या इसी कारण से हम श्रद्धाहीन हो गए?
3: श्रद्धा और निष्ठा का ह्रास होने के सिवाय और इसका क्या परिणाम होगा? अब हमें पुनः एक बार वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत करना होगा, हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वे सुलझाई जा सकेंगी।
2: ये क्या तभी संभव होगा? केवल श्रद्धा से ही हमारे समाज के असंख्य दोष कैसे दूर होंगे? देश में जो बुराइयां कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आंदोलन कर रही हैं, तथा अंग्रेज सरकार से प्रार्थना भी कर रही हैं। क्या इससे अच्छा भी अन्य कोई मार्ग है? श्रद्धा का इन सब बातों से क्या संबंध है?
3: पहले ये बताओ कि समाज के दोष दूर करने की आवश्यकता आपको है या सरकार को? यदि आपको आवश्यकता है तो क्या सरकार उन्हें दूर करेगी या आपको स्वयं ही उन्हें दूर करना होगा?
2: पर यह तो सरकार का कर्तव्य है कि प्रजा की आवश्यकताएं समझे और उन्हें पूरी करें। यदि हम हर वस्तु के लिए राजा का मुंह नहीं ताकें तो और किसका ताकें?
3: भिकमंगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। माना सरकार आपको आपकी आवश्यकता की वस्तुएं देने को एक बार राजी भी हो जाए, पर प्राप्त होने पर उन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने वाले मनुष्य कहाँ है? इसलिए पहले आदमी मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है, और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं?
2: पर बहुसंख्यक लोगों का मत ऐसा नहीं है।
3: जिसे तुम बहुसंख्यक कहते हो वो मूर्खों और साधारण बुद्धि वालों की बहुसंख्या है। सभी देशों में जिनके पास विचार करने के लिए मस्तिष्क है ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। यही कुछ मेधावी और विचारशील व्यक्तित्व सर्वत्र अगुआ होते हैं और बहुसंख्या सदैव उनका अनुकरण करती है। यही अच्छा भी है, क्योंकि जब तक नेताओं के बताए हुए मार्ग पर बहुसंख्या चलती रहती है तब तक सब काम ठीक से चलता रहता है। जो सोचते हैं कि वे इतने ऊंचे हैं कि किसी के सामने सर झुकाना उनकी शान के खिलाफ है वे मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि से अपना विनाश कर लेते हैं।
2: फिर समाज सुधार कैसे होगा?
3: आप समाज सुधार की बातें करते हैं, पर आप करते क्या हैं? आपके समाज सुधार का मतलब होता है विधवा विवाह या स्त्री स्वातंत्र्य या ऐसी कोई और बात। क्या ऐसा नहीं है? और यह भी किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता है। इस तरह के सुधार की योजना से कुछ लोगों का भला अवश्य होता है, पर समूची जाति या राष्ट्र को इससे क्या लाभ? ये तो सुधार नहीं, एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना और दूसरों के घर ढहने देना।
2: तो आपका तात्पर्य यह है कि समाज सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं?
3: ये कौन कहता है? अवश्य समाज सुधार की आवश्यकता है।

0: कि रोग समूल नष्ट किया जाए, नहीं तो वो फिर बढ़ जाएगा। सुधार अवश्य हो, कौन इतना मूढ़ है जो ये नहीं मानता। उदाहरण के लिए, हमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जाति की शारीरिक निर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
1: उस दिन सूर्य ग्रहण था, इसलिए प्रियनाथ जी बोले, अब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊंगा, और प्रणाम कर चले गए। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी के सम्मुख अंतर विवाह का विषय छेड़ा और पूछा,
2: भिन्न भिन्न जातियों और प्रांतवासियों में अंतर विवाह कैसे प्रारंभ किया जाए?
0: मैं भिन्न धर्मावलंबी जातियों या प्रांतवासियों में अंतर विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। कम से कम आज तो उससे समाज के बंधन बहुत ढीले पड़ जाएंगे और कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल समधर्म के अनुयायियों के ही परस्पर अंतर विवाह का समर्थन करता हूँ।
2: तो भी इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि मेरी पुत्री बंगाल में जन्मी और वहीं उसका लालन पालन हुआ है, और मैं उसकी किसी महाराष्ट्रियन या मद्रासी से शादी कर दूं तो वो ना अपने पति की भाषा समझेगी और ना उसका पति उसकी भाषा समझेगा, और फिर उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज में भी बहुत अंतर है। इस तरह कई अड़चने हैं, और फिर समाज तो एक तूफान खड़ा कर देगा।
0: अभी वो समय बहुत दूर है जब इस प्रकार के विवाह संभव हो सकेंगे, और आज तो ऐसे विवाहों के एकदम प्रारंभ कर देने का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त गुरु मंत्र ये है कि जिधर कम से कम विरोध हो उस रास्ते चलो। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी जाति की उपजातियों में अंतर विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदाहरण लो, उनमें कई उपजातियां हैं, जैसे उत्तराढ़ी, दक्षिण राढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर विवाह नहीं होते। अब दक्षिण राढ़ी और उत्तराढ़ियों में परस्पर विवाह संबंध शुरू करने चाहिए, और यदि ये अभी संभव नहीं है तो बंगजों और दक्षिण राढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है उसी में यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार बनी बनाई चीज को उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है ना?
3: अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा?
0: क्या आप नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह संबंध सीमित होने से हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रकारांतर से निकट के कुटुंबियों और आत्मियों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज की शरीर संपदा का ह्रास हो रहा है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की बीमारियां और बुराइयां उसमें घुस रही हैं। एक सीमित संख्या के व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है, और जन्म से ही नवजात शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की निर्बल संतति रोग के कीटाणुओं के आक्रमण का अवरोध करने में नितांत असमर्थ होती है। विवाहों की परिधि विस्तृत करने पर ही हम हमारी संतति में नए और ताजे खून का संचार कर पाएंगे, जिससे उसकी आजकल के विविध रोगों से रक्षा हो सके।
3: महाराज, आपका बाल विवाह के संबंध में क्या मत है?
0: बंगाल के शिक्षित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक दो वर्ष अधिक होने पर ही होने लगा है, किंतु उसका कारण समाज सुधार की भावना नहीं अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों ना हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो जानी चाहिए, पर बेचारा बाप करे क्या। जो ही लड़की जरा बड़ी होती है, माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसिने यही एक टेर लगाने लगती हैं कि वर की खोज की जाए, और जब तक वर नहीं मिल जाता तब तक बेचारे बाप को चैन नहीं लेने देती। सरकार ने कानून बनाकर 12 वर्ष की कन्या से विवाह दंडनीय कर दिया, तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धर्म नष्ट हो गया, मानो 12-13 वर्ष की कन्या के माँ बनने में ही धर्म रह गया हो। इसलिए सरकार भी यही सोचेगी कि वाह क्या धर्म है इन लोगों का, और ये आंदोलन कर राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं।
3: तो आपके मत से लड़के लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र हो जाने पर ही होना चाहिए?
0: अवश्य, पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए, नहीं तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से नहीं, वरन ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे। केवल किताब पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े

0: बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।
1: हमारे नारी समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है।
0: इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी बहादुर थी।
1: आप जैसा बता रहे हैं यह एक नई बात है और मुझे मालूम पड़ता है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा।
0: फिर भी हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, वरन अपने को भी शिक्षित करना है। साथ ही साथ महिलाओं को विज्ञान व अन्य विषय, जिनसे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। ये जानकर कि परोपकार के लिए ये करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरलता पूर्वक कोई भी विषय सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे पुण्य संकल्प, पवित्र आत्मा ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है।
1: इससे देश का किस तरह भला होगा?
0: उनके आचरण से तथा सर्व साधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श में उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से लोगों के विचारों और आशा आकांक्षाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आज क्या स्थिति है, माँ बाप येन केन प्रकारेण अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं, चाहे वो 9 वर्ष की हो या 10 वर्ष की। और यदि 13 वर्ष की अवस्था में ही उसकी संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए ही महोत्सव हो जाता है। यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगी उनका तो कहना ही क्या, उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा और विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा।
2: एक दिन संध्या के समय बलराम बाबू के घर रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभा भरी थी। मठ से स्वामी तुरियानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी प्रेमानंद व अन्य लोग भी आए हुए थे। स्वामी जी बरामदे में विराजमान थे और चारों ओर बरामदे में लोग भरे थे। जब जब स्वामी जी कलकत्ता आते इसी तरह लोग जुट जाते थे।
3: सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ये सुन रखा था कि स्वामी जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वे स्वामी जी से कोई भजन सुनने के इच्छुक थे। ये जानकर मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त ने स्वामी जी के समीप बैठे कुछ सज्जनों के कान में कहा कि स्वामी जी से गाने का आग्रह करो। स्वामी जी ने उनका आशय ताड़ लिया और वे मुस्कुराकर बोले,
0: मास्टर महाशय, ये आपस में क्या कानाफूसी चल रही है, जरा जोर से बोलें।
3: मास्टर महाशय के प्रार्थना करने पर स्वामी जी अपने सुरीले कंठ से ये

0: ऐसा प्रतीत होता था मानो वीणा बज रही हो। भजन समाप्त होने पर वे मास्टर महाशय से बोले,
1: अब तो खुश हो ना, पर अब और नहीं गाऊंगा, नहीं तो मैं भावावेश में आकर गीत की मादकता में डूब जाऊंगा और पश्चिम में व्याख्यान देते देते मेरा गला भी तो अब खराब हो गया है। मेरे स्वर में अब बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हो गया है।
2: स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को मुक्ति पर कुछ कहने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी ने खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिया। उसके बाद अन्य ब्रह्मचारी भी बोले। फिर स्वामी जी ने इस विषय पर उपस्थित सज्जनों को अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनके एक गृहस्थ शिष्य ने वाद का प्रारंभ किया। जब वे अद्वैत और ज्ञान को भक्ति और द्वैत से श्रेष्ठ बताने लगे तो बीच में कहीं किसी श्रोता ने प्रतिवाद किया। जब वे दोनों अपने अपने पक्षों का खंडन करने लगे तो एक अच्छा खासा वाद विवाद आरंभ हो गया। स्वामी जी कुछ देर तो सुनते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों आवेश में आ रहे हैं तो उन्हें शांत करते हुए बोले,
1: देखिए देखिए, आप लोग विवाद में इतना आवेश लाकर सब मजा किरकिरा कर देते हैं। सुनो, श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि विशुद्ध ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में परमेश्वर से परे कोई प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम भी तो परमेश्वर ही है।
0: उन्होंने बात को समझाते हुए आगे कहा,
1: इस तरह भक्ति द्वैत कहां रहा? इसी प्रकार जो भी इच्छाएं हैं, आकर्षण हैं, वृत्तियां हैं,

0: इसलिए ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ है? वे तो एक ही विषय का प्रतिपादन करती हैं।
1: महाराज, माँ की ममता में ईश्वर रह सकता है, पर इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर जगत के सत्कार्यों का जितना कारणीभूत है उतना ही पाप का भी है।
0: ये दृष्टि केवल परम सिद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही प्राप्त होती है। तभी ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेम या आकर्षण है वहीं ईश्वर है। पर अपने जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस अवस्था का प्राप्त होना आवश्यक है।
1: फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि पाप में भी ईश्वर ही है।
0: देखो, यथार्थ में ना तो कोई चीज भली है और ना बुरी है। ये तो केवल एक परिपाटी है कि हम किसी चीज को भली या बुरी कह देते हैं। एक ही चीज को हम बुरी कह देते हैं तो किसी अन्य अवसर पर उसे भली कहने लगते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है।
1: वो कैसे स्वामी जी?
0: उदाहरण के लिए इस दीप ज्योति को ही लो। इसके प्रकाश में हम पढ़ते हैं और कई अन्य उपयोगी काम भी करते हैं। ये उसके उपयोग का एक प्रकार है। अच्छा, अब यदि उसमें कोई अपनी उंगली रखे तो वो जल जाएगी। ये उसके उपयोग का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार कोई वस्तु जिस प्रकार उपयोग में लाई जाती है इसी से उसके भले बुरे का निर्णय होता है। इसी प्रकार सद्गुण, दुर्गुण, पाप और पुण्य है। हमारी मानसिक व शारीरिक प्रवृत्तियों का उचित उपयोग ही पुण्य है और उनका अनुचित उपयोग व ह्रास ही पाप है।
2: इस तरह कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर किसी ने कहा, नक्षत्र, तारा, ग्रह मंडलों के परस्पर आकर्षण में भी ईश्वर है। ये सिद्धांत सच हो या ना हो, पर यह विचार अत्यंत कवित्वमय है, इसमें कोई संदेह नहीं।
0: नहीं महाशय, ये कल्पना की उड़ान नहीं। ज्ञान प्राप्ति होने पर इस महान सत्य का आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
3: स्वामी जी आगे जो कुछ बोले उसका आशय ये था, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत में जो भिन्न भिन्न शक्तियां क्रियाशील हैं, वे भी एक ही महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
1: महाराज, तो यह माया क्यों है और आई कहां से?
0: ईश्वर के संबंध में क्यों का प्रश्न करना गलत है। जो अपूर्ण है, जिसमें अभाव और कामनाएं हैं, उसी के संबंध में क्यों का प्रश्न किया जा सकता है। जो निष्काम है, जो पूर्ण है, एक है, उसके संबंध में क्यों कैसा, माया कहां से आई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देश काल निमित्त ही माया है। तुम, मैं और हम सब माया में हैं, तथा तुम माया में रहते हुए ये प्रश्न कर रहे हो कि माया के परे क्या है। तुम जब तक माया में हो तब तक ये कैसे कह सकते हो?
2: इसके पश्चात फिर कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर मिल, हैमिल्टन, हर्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य पंडितों के दर्शन शास्त्र पर चर्चा हुई और स्वामी जी ने सरलता से सब समझाया। सबको स्वामी जी का पाश्चात्य दर्शन का अगाध ज्ञान देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद विविध सामयिक प्रश्नों पर चर्चा हुई और सभा विसर्जित हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब हमारी ये सभा समापन की ओर है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 12 जून शुक्रवार को हमारी सुबह की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनेगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। और सुबह 8 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। श्रोताओं, ये कार्यक्रम कल आधारित होगा गोपीनाथ कविराज पर, जिनकी कल पुण्यतिथि है। वहीं सुबह 8:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम आमने सामने। कल इस कार्यक्रम में बघेलखंड लोक गायकी पर चर्चा सुनेंगे आप शशि कुमार पांडे से। इनसे बातचीत की है मनीषा चतुर्वेदी ने। सुबह 9 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वागर्थ का। कल वागर्थ में आप सुनेंगे शायर विजय तिवारी को। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, कल ये कार्यक्रम होगा बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आधारित। विषय विशेषज्ञ संजय सिंह से चर्चा की है भगवती सक्सेना ने। सुबह 10 बजे परिक्रमा के साथ ही साथ पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट, जो की आधारित होगी महुआ महोत्सव पर। 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा का। ये कार्यक्रम आधारित होगा राम प्रसाद बिस्मिल पर। दिन में 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। ये कार्यक्रम आधारित होगा संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा पर। दिन में 11:30 आप सुनेंगे हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए। और अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र पूर्वाखली को। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।